0: ଶକ୍ତିର ପ୍ରବିଧି
1: କହିଲେ କ୍ଷେତ୍ରିକା କୁରା ତ କହିଲେ କୃଷକର କୃଷି ବିଜ୍ଞତା କୁରା
0: ହାନିଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରବିଧି ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁରା ମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମଙ୍କ ଆୱାଜ ରେଡିଓ ସାହିନୁ 89.8 ମେଗାହର୍ଜ
2: नयाबिनी कन्या कलेज को स्नातक प्रथम वर्ष को धर्ना संबंधी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्राप्त एकत्रीकृति उत्कृष्ट कलेज नयाबिनी कन्या कलेज में स्नातक तह द्वितीय बीए प्रथम वर्ष में विभिन्न सत्र को लगी धर्ना खुले जानकारी कराइन कलेज का विशेषता पर्याप्त सुविधा सहित आश्रय भवन मल्टीमीडिया ई लाइब्रेरी तथा पुस्तकालय सुविधा पर्याप्त छात्रवृत्ति व्यवस्था अंग्रेजी और नेपाली माध्यम प्रथम पत्र प्रिंसिपल
3: के तपाईँ ल्यापटप कम्प्युटरको खोजीमा हुनुहुन्छ?
0: विगत 10 वर्षदेखि सम्पूर्ण ब्रान्डका ल्यापटप कम्प्युटर फोटोकपी प्रिन्टर सिसी क्यामेरा पाइने एक मात्र पसल लजिक कम्प्युटर भरतपुर बेस चदौली बजार चितवन प्रोप्राइटर लोकनाथ लामिछाने मोबाइल 98555 54 ईमेल lok.lovebitpro@gmail.com
3: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो